0: आफ्ना नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सँगै उत्तर उत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोपाइटर सुजित हिराचन, हिराचन किचन वेयर, शुक्ला गण्डकी 4 खैरेनी टार, फोन 98461664647।
2: प्रोपाइटर सुजन श्रेष्ठ, तीन तारा केबल नेटवर्क प्रणाली, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा, फोन 98562286।
1: प्रोपाइटर थान प्रकाश न्यौपाने, गण्डकी सिसा पसल एन्ड फर्निचर, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा, फोन 98562338।
2: प्रोपाइटर ईश्वर अधिकारी स्मृति फेन्सी, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा, फोन 98560779987।
1: शेयर धनी सदस्य राजन रिमाल, शुक्ला गण्डकी 3 टार।
3: तनहु सेवा हस्पिटलमा अब थप नयाँ व्यवस्थित व्यवस्थापनको साथमा दैनिक निम्न विशेषज्ञद्वारा सेवा उपलब्ध भइरहेको जानकारी गराइन्छ। फ्यामिली फिजिसियन एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसियन डाक्टर रविबहादुर गुरुङ दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म। नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर साजन बराल दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। हार जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल विक दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप गुरुङ दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म। बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमन कुमार झा दैनिक बिहान 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म। डाक्टर रूपेश कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा स्वास्थ्य परीक्षण, फिजियोथेरापी परामर्श तथा दैनिक उपचार सेवासँग सम्बन्धित सुसन कालु स्नेहा मण्डल दक्ष प्राविधिकद्वारा 24 घण्टा परामर्श सहितको फार्मेसी सेवा साथै निशुल्क होम डेलिभरी। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0625414377 र 98564433। तनहु सेवा हस्पिटल, शुक्ला गण्डकी।

0: पछि त नयाँ छोरी ज्वाइँ आउँछन् के रे, फलफुल मसला ल्याउँछन् के रे, छोरी त आफ्नै भई ज्वाइँलाई त 100 त दिनु पर्ला नि दक्षिणा।
1: तिस बुढी 100 रुपियाँ दक्षिणा, पैसा र सैसा टिकिटिया।

0: डॉक्टर?
1: मोनू आज नहीं, मैंने एकादशी का व्रत रखा है हमारे लिए।
0: तो
1: अरे भगवान बुरा मान लेंगे।
0: अरे तो चीटेंगे यार डोली,

0: त्यसैले दान गरौ, सकेको गरौ सबैले गरौ।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति शुक्ला गण्डकी 8 तन हो।
2: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गंडकी 4 दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गंडकी एफएम को पारीपट्टी। मोबाइल नंबर 98560309 र 97065020209।
3: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज।

0: दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप गुरुङ। दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 देखि 7 बजेसम्म बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमन कुमार झा। दैनिक बिहान 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म डाक्टर रूपेश कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा स्वास्थ्य परीक्षण, फिजियोथेरापी परामर्श तथा दैनिक उपचार सेवासँग सम्बन्धित सुसन कालू स्नेहा मण्डल दक्ष प्राविधिकद्वारा 24 घण्टा परामर्श सहितको फार्मेसी सेवा साथै निशुल्क होम डेलिभरी। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0625414377 र 98560443। तनहु सेवा हस्पिटल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 BP चोक। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्मत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य, आर्थिक एवं शैक्षिक समुन्नतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष रामकृष्ण भट्टराई, प्रधानाध्यापक नारायण पौडेल एवं सरस्वती नमुना मावि, शुक्ला गण्डकी साथ खैरेनीटार परिवार,
2: निर्देशक उदय पौडेल एवं लिटल गार्डन इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल शुक्ला गण्डकी चार दुलेगौड़ा परिवार,
1: संस्थापक बाबुराम कार्की, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हिम कुमार श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल सुरेश पौडेल एवं ज्ञान बगैचा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल परिवार, शुक्ला गण्डकी 5 सेराटार,
3: संस्थापक शिव बहादुर कार्की, निर्देशक विक्रम कार्की, प्रिन्सिपल रोशन पौडेल एवं अरणीको सेकेन्डरी बोर्डिंग स्कूल परिवार, शुक्ला गण्डकी 3 कवासे,
2: प्रिन्सिपल एवं बाल विद्या मावि, शुक्ला गण्डकी 2 गाछे पानी परिवार।
4: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री, सबै ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग, गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा, प्राइम बैंक सँगै शुक्ला गण्डकी एफएम को पारीपट्टी। मोबाइल नंबर 98560309982 र 97065620209।
5: TVS साथ छ हाम्रो।
6: शुक्ला गण्डकी FM 97.6।